0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7
4: FM। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਟੂ 8 ਪੀ ਐਮ ਅਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।

0: ਯਾਰ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਬਟ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੈਸਟਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ
1: ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੂ ਮੂਡ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਦਾ ਪੜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ
0: ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
4: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application ate Citizenship Application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hethe Immigration ate Insurance diyan sewawan pradan karde han Sanu sampark karn layi 403-225-1111 Maninder Singh Tillon Asia Pacific Immigration Consulting Limited
7: Regulated Canadian Immigration Consultant
6: 403-225-1111
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल

0: تین چیک اپس تک انگلش ہندی اور اردو میں کنسلٹیشن دستیاب ہے
1: نئے پیشنٹس کا خیر مقدم ہے اور واک ان صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے ہیں
0: آج ہی وزٹ کریں کنگز ویو بولیورڈ پر یا کال کریں 587-360-6890 687-360-6890 لائف لائن میڈیکل کلینک
1: آپ کی صحت ہماری ذمہ داری
2: اپنے بزنس کو دیواروں سے باہر نکالیے اور سیدھے اپنے گراہکوں تک پہنچائیے सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM संडे 1-5 PM
3: एक बार फिर तो स्वागत है जी नाल दी नाल ही साडे को आज एक टीम भी पहुंच चुकी है जिदा मैं पहला कहा सीगा भी साडे कोल वेलरीन ते नाल अपनी पूरी टीम लेके आई है आज संगीता जी ते अपने सुनील जी एसएस लेके आए हैं वीएसएस सो इनका आज खैर मकदम है और वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ यू क्योंकि अच्छा प्रोग्राम आप करने जा रहे हो बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपने पहले भी किए हैं तो आज दे प्रोग्राम च आप थोड़ी जी गलबात जड़ी अपनी शुरुआत करते हैं कहां से वेलरीन क्योंकि आज के प्रोग्राम की मेन पिछला प्रोग्राम भी इन्होंने किया था और लेके आई थी आज फिर आई है तो वेलरीन वेलकम टू सबरंग रेडियो
4: थैंक सो मच सो हैप्पी टू बी हियर अगेन फॉर सितंबर टू रिमेम्बर
3: जी सितंबर टू रिमेम्बर
4: यस
3: अच्छा वेरी गुड तो बड़ा अच्छा इवेंट है जी इसका नाम ही सितंबर टू रिमेम्बर है और इसके लिए आज ये पहुंची है और जी तो क्या होने जा रहा है व्हाट विल बी देयर लाइक क्या होगा और क्या लोग एक्सपेक्ट करें
4: Yeah, so we had a great full house last time at Lotus Fine Indian Cuisine and we had such an incredible time that we're already back and we're going to be singing lots of English songs this time as well. So we're really leaning into the multiculturalism aspect and probably some Spanish songs as well and leaning into our diversity. This time we also have Kelly T with us as well. Mm-hmm. And same location, Lotus Fine Indian Cuisine in Charleswood and Calgary Northwest. And once again, wonderful five-course Indian cuisine paired up with East meets West when it comes to music. So super excited.
3: Ji.
5: Yeah, we're really excited.
3: Sangeeta is also here. So, Hamesha Sangeeta bhi humare saath hai. Community mein kaafi singing karti hai aur kaafi saalon se judi hui hai. I think hum bade saalon se jante hain Sangeeta. Kaafi achha gaati bhi hai, dance bhi karti hai, perform bhi karti hai, MC bhi karti hai. So, kaafi versatile actor hai humare community.
5: Thank you so much, Rajesh
3: ji.
5: It's a pleasure to always come back here and yeah, which microphone would you like me to use? Is that okay? Is this one okay?
3: Yes.
5: Okay, perfect. Yeah, I'm super excited. We did an event recently with Valerine and with Sunilji. It was a hit. We had a blast. It was a nice mix of Bollywood and Hindi. This time, we're going to be focusing on a little bit more English. And we have Kelly T joining us, who's a fantastic artist and sound engineer. So we're very excited for this event. Yeah.
3: That's very good. So Kelly T bhi hai ji hun dekhde hain Kelly T kitna ni rahegi jayegi but inne dassya vi kafi vadhiya perform karde ne sound engineer bhi ne and oh bhi karde ji
4: yeah she'll be playing her guitar she plays guitar professionally as well she's a professional bass player and she'll have a guitar player with her all the way from Edmonton for this specific wow. event as well so we will have live music like very acoustically rich
3: ji
5: yeah
3: वेरी गुड तो सुनील जी से भी थोड़ी बात करवाएं माइक आपस में ही एक
6: थैंक यू राजेश जी
3: इन्होंने तो छोड़ना नहीं था आपसे
6: जी थैंक यू जी थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर ऑब्वियसली द लास्ट शो वाज क्वाइट अ लॉन्चिंग पैड फॉर अस वी आर क्वाइट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज इट वाज अ बिग सक्सेस वैरायटी ऑफ म्यूजिक ऑल्दो इट वाज बेस्ड ऑन रोमांस बट वी जैसे मैंने आपको वादा किया था लास्ट टाइम कि अंत में सबको नचाएंगे
3: We did
6: make people dance. Everyone was on the dance.

0: protect you. I just love this song.
1: It's beautiful.
2: So, Martin, your turn.
0: You spend all this time with all these singers, so
2: yeah,
0: you know.
2: I think now I should be singing something by the time, but
0: maybe
3: we are all looking at you.
2: Yeah.
1: Actually, what is your favorite song?
2: I don't know.
1: Do you like English music as well? Do you listen?
2: A little bit, but earlier I used to. Now I'm not a musical guy anymore because. I listen more news and, you know, different kind of things.
1: Okay.
2: Less music, but sometime I listen, but very rare, I think, you know, it's like that. Okay. That's why I do Bollywood nights and maybe, you know, kabhi wahan pe hum log Bollywood ki baatein karte hain, dance karte hain, sab kuch karte hain, but main singing to is not my cup of tea.
0: Well, we'd love to hear you. You know, everyone has a voice.
2: Par mujhe aata nahi.
1: That's okay.
2: अगर मैं ऐसे गाने लगा तो मैं भी सब लोगों की तरह गाना गा गा के
0: You never know. It might be just a hidden talent.
2: Yeah, maybe I will. I think I will explore first in the washroom.
1: Yeah.
3: And, well, that's where we all
2: start. So then I will come outside and start singing on the radio. Okay. अभी जो थोड़े बहुत लोग सुन रहे हैं वो भी भाग जाएंगे. वो कहेंगे कि ये क्या सिंगिंग किया. तो वैलरी ने प्रोग्राम रखा जी 18th को, राइट? 18th सितंबर को और लोटस में.
0: लोटस फाइन इंडियन कुजीन.
2: और इसमें वैलरी, संगीता और हमारे सुनील जी, ये तीनों ही गाने गाएंगे. ये तीनों, मैंने पहले भी कई बार कहा, ये देखने में देसी लगते बट है ये गोरे ही अंदर से.
1: तो The Oreo cookies,
3: yeah,
1: coconut.
2: Yeah, so इसलिए इनका असली रूप सामने आ गया. ये सिंगिंग जो है वो हम लोगों को तो वैसे बॉलीवुड की दिखाते हैं, पर अल्टीमेटली जो है ये इंग्लिश म्यूजिक के ऊपर ही ज्यादा इंजॉय करते हैं. तो बट कुछ ना कोई हिंदी भी आपको गाना
0: पड़ेगा.
2: सुनाए आप प्लीज, क्योंकि मैं तो वो कर लूंगा. हमारे लिसनर जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए भी हम हिंदी भी गाएंगे साथ में.
3: अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल सा गाना है
2: जी.
3: ओके, ये आपके लिए है.

0: गाया भी बड़ा जबरदस्त.
1: थैंक यू, अप्रिशिएट इट.
0: बड़ा अच्छा, क्योंकि ऐसे गाने जो है ना वो हर बंदा उसको अच्छे तरीके से नहीं गा पाता, बट आपने चूज किया और गा के दिखाया, इट मीन्स भी आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बड़े होके आप अच्छे सिंगर बनोगे.
1: थैंक यू, टू काइंड.
0: जी, पर अच्छा गाना, इट्स रियली आई लाइक इट.
1: थैंक यू.
0: जी जी संगीता.
2: He's an amazing singer and I you know, at the end of the day music is universal, whether you sing in English or Hindi. And I remember when I was a child, I grew up being completely glued to the screen watching Bollywood. Mm-hmm. I fell in love with Bollywood music, but English is very close.
0: Well, because
2: very
0: of
2: close.
0: Your parents, huh?
2: Oh, absolutely, yeah.
0: वो भी Bollywood के fan हैं, बड़े जबरदस्त.
2: For sure.
0: Ashok ji or
2: yeah. So I'll sing a little something of a favorite song.

ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छा संगीत ना भी पूरी रौनक लगा दी है, ये अच्छा गाना है। समय बड़ी तेजी से भागता जा रहा है, हमारे पास चार पांच मिनट है मैक्सिमम, तो फिर हमें क्योंकि वाइंड अप करना पड़ेगा जी।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरा 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location.

0: free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वी घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम चार तो पांच कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम आठ तो नौ जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
2: जदों तुसी नवा घर बनाउंदे हो तां तुसी उन्हां कम्युनिटी सहूलतां लई उडीक नहीं करना चाहुंदे जो उस थां नूं इक असली गुआंढ वर्गा अहसास दिंदियां ने नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच हक्सली एरिया जिथे पहले परिवारां दे आउण तों पहलां ही पार्क अते पैदल चलण वाले रस्ते तैयार ने शॉप्स अते स्कूल नेड़े होण अते शहर दे वख-वख हिस्सियां तक तेज पहुंच दे नाल हक्सली तुहानूं जुड़िया रखदा है बिना जगह कुदरत जां जीवन दी गुणवत्ता दे नाल कोई समझौता कीते अज ही हक्सली दे 12 शोहोम्स वेखो घरां दी कीमत मिड 5 लाख तों शुरू विजिट करो genesisland.com
3: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7

0: इंश्योरेंस दे। रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
2: लाइसेंस नंबर 10394।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222।
6: रेडियो सरसंगम 94.7 FM ते जी स्वागत एक बार फिर ते खबरां वालों हुण रुख करदे हां जी। USA कैनेडा दी चल रही ट्रेड वॉर जिहड़ी है आपसी, ये हुण बहुत ही नाजुक ते गंभीर मोड़ ते पहुंची जापदी है। दोवां देशां वल्लों एक दूसरे ते पाबंदियां, टैरिफ, तोमतां भी कह लो जो कि ज्यादा ते USA वल्लों ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਬੱਲਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ US ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗ੍ਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ

0: नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे

94.7 FM रेडियो सरसंगम एक बार फिर स्वागत। कुछ मिनट बाकी ने प्रोग्राम विच ते डोनाल्ड ट्रंप साहब साडा सारा समा खा जांदे ने, पर होर खबरां भी जरा करदे आ। कनेडा दे विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दा जिहड़ा मुद्दा है इहदे बारे थोड़ी जी चर्चा करदे आ जी। कि 2024 दे विच गिणती की गई जो मनिया गया कनेडा दे विच रिकॉर्ड तोड़ गिणती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। हुण 2024 दी ओ पीक ते उस तो बाद जिहड़ी उत्पन्न हुई स्थिति है इहदे बारे सरकार ने जो कदम चुके ते IRCC नूं जो हदायतां गईयां, नतीजा यह होया कि गिणती बहुत घट गई है ते एक तिहाई घट चुकी है उदों नालों गिणती। IRCC इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा वाले कन्फर्म करते हैं कि कनेडा वाले ने जान बुझ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिणती जिहड़ी है वह घटा ली है ते ग्रैजुएट लैवल ते जो एडमिट करते ने उन्हां दी गिणती काफ़ी घट गई है। डिपार्टमेंट दे विच जो इनफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने दिती है उस विच तीन चार क्लेम किए गए हैं जिस विच कि 2024 तो बाद एक तिहाई घटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिणती 1/3। नवे अराइवल जिहड़े ने इस साल जिहड़ा 26 चल रहा जनवरी तो जून तक वह 2024 नालों 82% घट ने। यूनिवर्सिटी शेयर जिहड़ा है नवे स्टडी परमिट होल्डर का वो 2024 दे विच सी उस नालों 25 दे विच वधिया ते ये नवे मेजर जिहड़े ने ये हो सकदा अगे भी जारी रहन। अपने जिहड़े अंकड़े ने IRCC दे उन्हां मुताबक इस नूं कुछ दिन पहला अपडेट किया गया पिछले महीने की 20 तरीक नूं रिपोर्ट किया गया कि कैनेडा विच 30 जून 2026 तक 632,535 स्टूडेंट से इंटरनेशनल ते 2026 का जिहड़ा है ये अंकड़ा इनू जरा 2024 नाल कंपेयर करिए ते उदों गिणती सी 928,430 ये 2024 दे अखीर विच सी ते 2025 दे विच सी 691,215। सो पिछले साल के अद्ध नालों 2026 विच कोई खास गिणती नहीं घटी। पापूलेशन जिहड़ी है जे असीं गल करिए 2024 दे नालों ते ये तकरीबन 3 लख घट गई जो जां इस नूं 31% जां 32% गिण लो जो कि 1/3 तकरीबन बन जाती है। जिहड़े नवे आ रहे ने वह होर भी ज़्यादा जिवें पहलां दस्सिया कि जनवरी तो लैके जून 2026 तक

प्रोग्राम दे अगले स्पॉन्सर मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स ने जी कैनेडा दी सब तो वड्डी डीलरशिप है स्टार डीलरशिप दा अवार्ड इना दे कोल है जेकर तुसी मर्सिडीज दे ब्रांड दे नाल जुड़ना चाहुंदे हो ते गौरव शर्मा नू कॉल कर लो ए तुहाडी डील नू होर भी सौखियां करनगे इना दा फोन नंबर 4039036757 है जी मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स